0: kiran ke thinam te zo khari me sunu yu kurbe
1: yonga ya jas zu de da ye jeji ni jesting tang do xian de cham de gui lu lo zhi jie ge de ba zu ju man zha sai le zhong tam zheng ma xi cham xin jie le zhen de mei zi la ge jian wen de song gui lu ni de tang do tie de ge na le xi de gui cha xie de ge yo xi tang do o de ge na le la san gu zhong de ge yo xi
0: Tetsu san wo tingdui gu zhung xia darbe.
1: Yin guo xiong. O nge lo sum ju nang ki zagba da tu di tang do long zhi yin zhi xie kan da nga sim gu di ya zhung di ge nge sim zhi kye bi.
0: Chen ki rang ge zhung de zu si zhi nang jie pian to kharo zhe.
1: Xi zhe pi zhu gen zhe stang gu me nge ta zang da me ओ ने रादा फंग दु से से दी वर की चो सम जुआ
0: फंग दु दा के से हर यु बा तंद सवा चों से दे सोर्स दा केम दु
1: के जी दी से यो मार दा कब दी दु ने जुगे फंग दु लुने फंग दु सु यो से
2: 이네
3: 公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里呗公司小了可以公布也不行过的事给我那里
1: 可就没决定这卡的谁有预备故事啊这下这下谁不对不上谁
3: 让你卡起我的谈到点不得个预的婆母来给我接子买这边啊
0: 爸了既然公路那么谁来这点做不过我担心的谁
1: 妈是一个当多可是写作他的三个不写可是明明是牛肉家的啊自动了牛肉家是吧人妈是他既然你对的明明是娘们的这些我是呗听这来没啥事
3: 那这意思连屋让爹平的你这奶奶同样有个是呗小展让爸爸你家弄菜的气氛信什么呀给允许姐拿爹上有不有不着